ला के दिखाओ। तो जब हम वार्निंग इस टाइप की करते थे कि कोई जरा एग्रेड ला के तो दिखाए, तो बच्चे समझ जाते थे कि अब जो कुछ होगा वो बहुत बड़ी कहानी होगी, अब पेपर सख्त होगा। अच्छा, खुदा, नबी, इमाम, औलिया सब कह रहे हैं इम्तिहान सख्त है, रास्ता बहुत सख्त है। अच्छा, हमारा दिल हमसे क्या कह रहा है? इंशाअल्लाह आसान होगा। किसकी बात मानूं? वो सब कह रहे हैं कि सख्त होगा। अभी मैं नहजुल बलागा में से शायद कुछ जुमले निकाल के आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वो सब कह रहे हैं कि सख्त होगा, हमारा नफ्स क्या कह रहा है? इंशाअल्लाह आसान होगा। अच्छा, इंशाअल्लाह को तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई मैं क्या कि क्यों अपने आप को सख्ती में डालना चाहूंगा, मैं भी कहूंगा इंशाअल्लाह आसान होगा। लेकिन सवाल ये कि इन बयानात का क्या होगा? अब मिसाल के तौर पर ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में मुख्तसर सिरात मुस्तकीम के बारे में अर्ज किया, इसके बाद अगर मैं सिला रहम में कोताही करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर जो दो सपोर्ट मिली हुई थी उनमें से एक खो गया। अच्छा, अगर अमानतदारी में कोताही करूं, इसका मतलब यह कि दूसरी सपोर्ट भी गई। अब अगर किसी को यह देखना है मैं सिरात मुस्तकीम पे क्या रहूंगा, थोड़ा सा हिसाब कर ले मैंने जिंदगी में अमानतदारी में कितना स्कोर किया है। अच्छा, अमानतदारी के स्कोर को कैसे समझूं? एक वो अमानतदारी होती है जो किसी ने 25 आदमियों के सामने मुझे दिखाकर कोई चीज दे दी तो मुझे तो वापस करनी पड़ जाएगी। एक वो अमानतदारी होती है जिसमें किसी ने कुछ नहीं देखा लेकिन देखने वाला खुदा है। बात भी कोई करोड़ों की नहीं है, बात चंद रुपए की है लेकिन माल खुदा का है। और अगर कहीं मामला माल से निकलकर हिदायत पर आ गया, अब बताओ अमानतदारी क्या है? अमानतदारी किसे कहते हैं? अच्छा, बात अगर इज्जत पे आ गई, किसी इंसान की इज्जत पे, अजान मुहतरम, एक एक चीज को सोच के पता चल रहा है काम आसान नहीं है, काम बहुत सख्त है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है बचने का और निजात का, उबूदियत, अल्लाह की बंदगी। लिहाजा बज़ाहिर शायद इस वजह से सिरात मुस्तकीम तलब करने से पहले बंदे से कहा कि कहो इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन, बंदगी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और नुसरत मदद खुदा ही से तलब करनी है और खुदा पूरे निज़ाम के साथ, खुदा, कुरान, नबी, खानदान इस्मत व तहारत, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरज। अच्छा, हर रोज़ क्या होता है कि कुछ लोग नए आते हैं, हर रोज़ कुछ लोग नए आते हैं। जो नए आते हैं वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो उन हजरात की खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अगर ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं तो आप बाहर भी जा सकते हैं, और अगर आप रुकने पर किसी भी वजह से मजबूर ही हैं तो अपनी इबादत को ज़ाया ना करें, सुन ही लें, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج। कल आपकी खिदमत में अर्ज हुआ कि मौला ने किस तरीके से इस्तलाह की तारीफ फरमाई, जिसको हमने इज्जत समझा, इमाम ने फरमाया नहीं ये इज्जत नहीं है, तुम्हें इज्जत ढूंढनी थी कनात के अंदर, जो काजी शुरह को लिख के भेजा और कहा कि तुम्हें इज्जत ढूंढनी थी कनात

0: गरीब उलवतन हो गए। ऐसे गरीब उलवतन हुए तौआ के घर के सामने बैठे थे, वो मोमिना निकली और उसने कहा कि तुम शक्ल से शरीफ हसब नसब के मालूम होते हो, कहीं और चले जाओ। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के जासूस शहर के अंदर ढूंढ रहे हैं। कहने लगे कि मैं रुक गया, थोड़ी देर रुके, फिर दोबारा वो औरत बाहर आई तौआ मोमिना। उसने कहा तुम अभी तक गए नहीं। कहा मैं गरीब उलवतन हूँ, मुझे बुलाकर छोड़ दिया लोगों ने। जैसे ही सुना, कहा तुम कहीं मुस्लिम बिन अकील तो नहीं हो? मुस्लिम बिन अकील की गुर्बत उस दर्जे पर आ गई थी कि पर्दों में बैठी औरतें भी जानती थीं कि आज मुस्लिम बिन अकील गरीब है। लेकिन ये मोमिना थी। कहा मेरे घर के अंदर आओ, घर के अंदर आओ, मैं बहुत मुख्तसर करूंगा ना, आपके वक्त नहीं है। बिस्कुल एक मौके के ऊपर जब दुश्मन की आवाज़ सुनी तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तौआ मेरा सामान हर्ब लाओ, मुझे दुश्मनों से लड़ना है। कहा मौला आप अकेले हैं, ये बहुत सारे आ रहे हैं और ये इस तरीके से आप लड़ाई ना कर पाएंगे, आप मेरे घर में रुक जाइए, मेरे घर को किला बनाइए, हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे, आप मुकाबला कीजिएगा। फरमाए तौआ मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं मारा जाऊँ और गरीब अजनबी लोग तेरे घर के अंदर दाखिल हो जाए, मैं कबूल नहीं करूँगा। आज जो परसों तरसों मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मसाइब के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मखसूस हैं सैयद सज्जाद के लिए, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा सकता। फरमाया मैं कबूल नहीं करूँगा कि अजनबी तेरे घर में घुसे। अब कोई शाम गरीबा को कैसे पढ़े मुस्लिम बिन अकील के सामने। एक मौका आया जब दुश्मनों ने घेरे में ले लिया और मुस्लिम बिन अकील के गोया होंठ कटा हुए, उसमें खून जारी हुआ। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। फिर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, मुस्लिम बिन अकील ने पानी मांगा, एक प्याले में पानी लाया गया। मुस्लिम बिन अकील ने पानी पीने का इरादा किया लेकिन उसमें खून चला गया। दोबारा लाया गया, दोबारा खून गया। तीसरी दफ़ा लाया तो रोक लिया और कहा मुझे अब पानी नहीं चाहिए। पूछा क्यों नहीं चाहिए? कहा ये जो बार बार पानी इस तरह हो रहा है इसका मतलब है हुसैन प्यासे शहीद होंगे, खुदा नहीं चाहता मैं पानी पीऊँ, मैं अपने इमाम की प्यास पर बर्दाश्त करूँगा, मैं सब्र करूँगा अपने इमाम की प्यास को। ये दो मरहले हो गए। गरीबुल वतन इज्जत का पैकर, इज्जत का पैकर, प्यासा शहीद, प्यासा शहीद। आइज़ो अब तीसरा, दारुल अमारा से नीचे गिराया गया, नीचे गिराया गया, गर्दन में रस्सी बांधकर लाश को कूफे के बाजारों में घसीटा गया। इसका एक और मरहला तय हुआ, उनका लाशा पामाल, इनका भी लाशा पामाल, इसके मरहले तय हो गए। अब एक जगह ऐसी आती है जहां सिर्फ इमाम होता है और कोई नहीं आ सकता वहां पर, वो जगह कौन सी है? वो जगह है यतीम बच्ची के तमाचे। जब मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, सैयदुल शहदा ने मुस्लिम बिन अकील की बच्ची को बुलाया, गोद में बिठाया, सर पे हाथ फेरा, एक रिवायत के मुताबिक गोशवारे लटकाए। बच्ची ने कहा आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे कोई यतीम को प्यार करता है, क्या मेरा बाप मर गया है? मेरे मौला आपकी यतीम बच्चियां भी देखेंगी, फिर वो कहेंगी कि मुस्लिम बिन अकील की बच्ची यतीम हुई तो सर पे हाथ फेरे थे और हमें तमाशे लगे।
1: अलानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बियन क़ल्बून मातमे हुसैन।

बड़े हाजी बन सकता है नहीं, हज बैठे इंसान सवाब कमा सकता है। इमाम ने फरमाया कुछ लोगों का हज कंप्लीट है, दूसरे लोगों का हज कंप्लीट नहीं है। कितने चीखों पुकार करने वाले, इसकी वजह हमारे उलमा ने बताई है, मुमकिन है कुछ लोग हज पर जाएं, नऊदो बिल्ला हाकम बदहन, सबके हज सब लोग हाजी हैं, सबके अल्लाह तबारक व तआला हज को कंप्लीट करे, हज कुम मकबूल व सईकुम मशकूर, हम दुआ करेंगे। लेकिन कभी कभार बेदारी के लिए रिमाइंडर ज़रूरी है अपने लिए और उन लोगों के लिए जो इबादत करते हैं, कहीं हज दिखावे के लिए तो नहीं है, कहीं नेम के लिए तो नहीं है, कहीं फेम के लिए तो नहीं है, मेरे नाम के आगे अलहाज लिखवाने के लिए तो नहीं है, लिखवाने के लिए कोई ना ले तो नाराज़ हो जाऊँ, तो कहीं नाम के लिए ना तो फिर हज कबूल नहीं होगा, कहीं बिजनेस तो नहीं है ये तुम्हारा हज पर जाना, कहीं तिजारत तो नहीं है, इससे मना किया गया हज को कारोबार ना बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हज के दौरान भी हम किसी की गीबत कर बैठे, हज के दौरान भी किसी के दिल को तोड़ बैठे, गुनाह हमसे सरजद हो जाए, वो हज कंप्लीट नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि हक़ुल इबाद हक़ुल नास मेरी गर्दन पर हो जिसे मैंने अदा नहीं किया है। हज कंप्लीट होने वाला नहीं है जब तक मैं उनके हक को अदा ना करूं या उनसे माफ़ी ना मांग लूं। कि ये हकूक अदा ना हो इंसान का हज मुकम्मल नहीं होता। ज़रूरत है कि हम इस बात की तरफ तवज्जो करें, हज लिल्लाह के लिए हो, अल्लाह के रास्ते में हो। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पर गए उनके हज को कबूल फरमाए, जो हज का इंतज़ार करते इंशाअल्लाह आइंदा साल अल्लाह तबारक व तआला हम सब को खाने काबा की ज़्यारत नसीब करे। और एक रिमाइंडर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग कर रहे हैं वो काम, लेकिन एक रिमाइंडर होना चाहिए, हमारी कम्यूनिटी में देखने में कम आता है, हो सकता है पसे पर्दा आप बहुत इबादत करते हैं, बहुत काम करते हैं, वो क़ुरबानी देने का मसला है। क़ुरबानी जो हज के मैदान में, मिना के मैदान में हज के दिन दी जाती है, वो क़ुरबानी वाजिब है। उसकी शबी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए अपने घरों में, अपने बागात में, अपने फॉर्म्स में मिलकर सोबे क़ुरबानी दे सकते हैं, अपने घर वालों की सलामती के लिए, अपनी तरक्की के लिए। एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लेगेसी को बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग, उनके मीरास को आगे बढ़ाएंगे, जैसे आज़ादारी बरपा करते हैं हज़रत इब्राहीम के नाम कि सभी बनाते हैं, और क़ुरबानी देना है रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड एक्ट है कि आप क़ुरबानी दें या दे सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को क़ुरबानी का पैसा दे दें, वो ज़िबह करेंगे आपके बिहाफ में और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोश्त को फ़कीरों के दरमियान, पुअर और नीडी लोगों के दरमियान। उसके हुकूक हैं, एक मोहब्बत बढ़ती है, तकवा अल्लाह तबारक व तआला कहता है क़ुरबानी के ज़रिए से, इट विल हेल्प टू डेवलप योर तकवा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल है, एक कनेक्शन हमारे और दरमियान फ़कीरों के दरमियान बाकी रह जाता है इसी क़ुरबानी के ज़रिए से। $50 $60 की कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक क़ुरबानी के हज़ार फ़ायदे हैं। अब जाएंगे, अब सर्च कर सकते हैं गूगल में, एक क़ुरबानी के हज़ारों फ़ायदे हैं। इंसान सिक्कों में खर्च करे, हज़ारों में कमाए, इससे बढ़कर क्या बेनिफिट हो सकती है और क्या फ़ायदा हो सकता है। इंशाल्लाह आप लोग इसका बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, एक कल्चर बनाएं, एक तहजीब बनना चाहिए क़ुरबानी की। अपने बच्चों को साथ बाज़ रिवायतों में क़ुरबानी दो तो अपने हाथ से दो, किसी के पास फॉर्म है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो कर सकते हैं तो जाएं अपने बच्चों के साथ, अपने हाथ से कुर्बानी दे रिकमेंडेड है। अगर अपने हाथ से नहीं दे सकते, घबराहट है, डर है, हाथ उठता नहीं है, तो विटनेस बनो कुर्बानी की, एटलीस्ट समवन इज़ डूइंग द कुर्बानी, आप विटनेस बनो कि किस तरह कुर्बानी दी जाती है, ताकि बच्चों को बताएँ ये है तरीक़ा दरहकीकत कुर्बानी का, और ये है तरीक़ा दरहकीकत लेगेसी को कायम करने का। वो मुमकिन है कोई कहे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे मराजे कराम कहते हैं आप शेयर भी कर सकते हैं, पाँच लोग जमा हो जाएँ ये कुर्बानी दें, पूरी फैमिली मेम्बर्स जमा हो जाएँ ये कुर्बानी दें, पूरे दोस्त जमा हो जाएँ ये कुर्बानी दें, पूरे रिलेटिव जमा हो जाएँ ये कुर्बानी दें। यहाँ तक ताकीद है कुर्बानी की, तो ज़रूर इसके पीछे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, इसकी बात की तरफ खास ख्याल रखें। हत्ता आयतुल्ला सिस्तानी से किसी ने पूछा, आका मेरे पास अब पैसा नहीं है, फैमिली मेंबर्स के पास भी पैसा नहीं है, क्या मैं लोन लेकर कुर्बानी दे सकता हूँ, कर्जा लेकर कुर्बानी दे सकता हूँ, एक कंडीशन के साथ। आगा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह, लोन लेकर कर्जा लेकर तुम कुर्बानी दे सकते हो, लेकिन बी केयरफुल, अगर रीपे करने की ताकत तुम्हारे पास है तो, अगर दे सकते हैं वापस तो कर्जा लो, ये कर्ज़े का हुक्म है, आमतौर पर हुक्म यही है, अगर कर्जा वापस कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं कर सकते तो प्रॉब्लमेटिक है,
یہ قلون لے کر بھی انسان قربانی دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے ان احکام جو مستحب ہیں لیکن کافی فائدے ہیں

ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Is majlis ke andar jo hamare paas 30-40 minutes jo hamare paas maujood hain, koshish karunga isko kuch hisson ke andar divide karein. Pehla jo part hoga wo Imam Muhammad Baqir alaihi salatu wa salam ki zindagi ke wo halaat aur waqiat hain, wo problems aur difficulties hain ke un difficulties ke sath imam ne tabligh farmayi hai. Hamare paas ek impression ye rehta hai ke imam ne sirf ek madrasa khol liya, ek hauza khol liya, kuch students samne bitha diye, jabki haqeeqat ye nahi hai. Imam ka kaam kya kaam hai, is pe hum baat karenge. Iske sath next part ke andar jaakar hum baat karenge jo ahadees ke upar hai. Hamare jawanon ke liye shubhat, doubts create kiye jate hain, khususan when it comes to فضائل of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Kaha jata hai ki bahut sari riwayat jo thi wo ghulu wali riwayat hai, mufawwiza aur ghaliyon ne distortion ke fabricated riwayat ko insert kiya hai hamari books ke andar. Kya really aisa hai? So hum second hisse ke andar hum dekhenge ki ye hadithon ki collection ka system tha kya, kya aise lousy tha, leaky tha, unscientific tha, koi checks and balances nahi the, ya nahi bahut zyada checks and balances the, isko hum dekhenge. Aur aakhir mein imam se ek riwayat leke jo hai phir hum inshaallah taala majlis tamam karenge. Salawat bhejo Muhammad wa ali Muhammad par. Allahumma salli ala Muhammad. Dar haqeeqat agar main ye kahun, hamari kotahiyan hain, hamari deficiency hai ek imam ko pehchanne mein aur dusra imam ko pehchanwane mein, imam ko samajhne mein, imam ko samjhane mein. Samjhane ka sara main apne upar bojh leta hu ki hum sayyid ko chhod dijiye, hum jaise haqeer hain, hum nahi samjha sake ki imam ka kaam kya to personality kya thi. Agar waqaiatan main aap se kahun, Imam Baqir alayhi salatu wasalam ke koi 5 kaam lekar aaiye, 5 things what he has done from his life and that you can implement in your community, that your community can excel. Kar sakte hain kya hum? Imam Hadi alayhi salatu wasalam ke bare mein le lijiye, Imam Jawad alayhi salatu wasalam ke bare mein le lijiye, kya hamare paas waqian ye capacity hai ki unko hum role model banaye aur apne masail ka hal unki life se talash kare aur implement kare? Because I'm a teacher, so teaching ke hisab se batau, hum kehte hain Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy ke andar pyramid hota hai, 6 levels hote hain, understanding se shuru hota hai. Bachchon ko samjhane ke liye jo first level hota hai usko kehte hain understanding. Beta isko water kehte hain, iske andar H2O hydrogen ke 2 molecules hote hain, oxygen ka 1 hota hai. Aap recognition sikhate hain, aap understanding sikhate hain, ye first level hota hai. सबसे आखिरी लेवल होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग. हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर क्या करता है इंसान, वहां जाके रिसर्च करता है. अब वहां पर जो सीखा है उसकी बेस पे अब क्रिएट करता है. अब आप मुझे बताइए, मेरी हालत तो ये है कि मैं अभी तक लोअर ऑर्डर थिंकिंग में फंसा हुआ हूं. इमाम को मैं समझ रहा हूं है क्या, इमाम की लाइफ को लेकर इनसे करना क्या है, ये मेरे पास अभी तक नहीं आया है. वन ऑफ द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस है एक प्रोजेक्ट, समझे एक प्रोजेक्ट है आपके पास, वाकईतन कमाल किया इमाम ने. एक प्रोजेक्ट है आपके पास, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी ओपन करें, उस यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे. फ्रॉम अराउंड द ग्लोब दे विल कम टू यू. अच्छा, अब इसके अंदर क्या, इस प्रोजेक्ट के अंदर ना आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस मौजूद है. मैनी अ टाइम्स वॉट हैपन्स एक्चुअली, when we fail to we start blaming, we didn't have funds. Hamas funds nahi the, funds aapke paas nahi hai. Isi tarike se aapke paas koi social media nahi hai, na telegram hai, na whatsapp hai, na youtube hai, tiktok kuch bhi nahi hai, aur aap akele tanha hain aur us puri duniya se sab aapse ilm hasil karna chahte hain. Ye karnama, ye miracle imam Baqir alaihi salatu wassalam ne anjaam diya hai. यानी वो शख्स, वो इमाम तन तनहा मदीने के अंदर मौजूद हैं और पूरी दुनिया से उठकर उस इमाम से इल्म सीखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं काल अल इमाम अल बाक

अक्का की प्यास खाई, अक्का एरिया था वहाँ से लेकर आया था, मैंने रसूल खुदा से सुना उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी, और तमाम अफराद टूट पड़ते हैं उस प्यास के ऊपर और वो प्यास ख़त्म हो जाती है। ख़ुद इब्ने तैमिया जो शिया का मुखालिफ रहा, आइमा का मुखालिफ रहा, ये ख़ुद अपनी मिनहाज सुन्ना नबविया के अंदर उसकी स्टेटमेंट है, वो आपके सामने पढ़ दूँ तो बुरी चीज़ नहीं है। वो क्या कहता है, वो कहता है वज़अ अन्नास अहादीस कसीर मकज़ूब अला रसूलिल्लाह, लोगों ने झूठी हदीसें बांधी रसूल खुदा के ऊपर। वज़अ कसीरन मिन फ़ज़ाइल अल-खुलफ़ा अल-अरबा व फ़ज़ाइल मुआविया, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, और लोगों ने खुलफा के ऊपर, मुआविया के ऊपर हदीसें झूठी, फैब्रिकेटेड हदीसें। अब इमाम के पास ये इशू है, सामने फैब्रिकेटेड रिवायात मौजूद हैं। खुद अहमद इब्ने हम्बल का सुनिए, अहमद इब्ने हम्बल व्हेन ही इज डूइंग हिज रिसर्च वर्क, वो कहते हैं मेरे पास 750,000 रिवायात हैं, मैंने देखी 750,000। वो तो जब मैंने छान फटक की और फिल्टर किया, सिर्फ 30,000 को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बाकी को रिजेक्ट करूँगा। तो जो मैथमेटिशियन या अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, कैलकुलेट करें कितना परसेंट बनता है, इट इज़ ओनली 4%। 30,000 का 4% बनता है, यानी 4% रिवायात ऑथेंटिक हैं, बाकी क्या हैं, फैब्रिकेटेड हैं। ये मुश्किलात हैं, मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना इन रिवायात की वजह से झगड़ा कहाँ शुरू हुआ। जो आपको नज़र आता है अहले सुन्नत के अंदर एक्सट्रीमिज़म, कुछ जगहों पर एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, दाइश किस्म की मैंटेलिटी नज़र आती है, उसकी रूट कॉज ये अहादीस हैं। मैं इसमें जानना नहीं चाहता, वरना बोलूँगा तो हाफ एन आवर वहाँ निकल जाएगा कि ये कॉजेस कहाँ से आए। सही है, ये हदीस का ये मालूम। अब इमाम के सामने एक पूल मौजूद है रिवायात का जो कंटेमिनेटेड है, और ये इस, अच्छा ये जो फिल्टर जो किया अहमद इब्ने हम्बल ने, ये फिल्टर जो है अहमद इब्ने हम्बल का फिल्टर है। अगर आप हमारे ज़रिए से फिल्टर करें तो परसेंटेज शायद बचे भी ना, क्योंकि वो अबू हुरैरा को एक्सेप्ट करें, हम अबू हुरैरा को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये समझ में आ रही बात। अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस बयान करना चाहते हैं, अगर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस बयान करें, सो ही कैन डू वन थिंग, समीअ तो अभी, सही है, मैंने अपने अब बाबा जान से सुना, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से सुना, उन्होंने रसूल खुदा से सुना, ये कर सकते थे वो ये। लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम किया ही नहीं, ये काम ही नहीं किया। आए मिंबर पर आकर बैठे और किसी ने सवाल किया, बोला खुदा का हुक्म यहाँ पर ये है, सारे के सारी जो नैरेटर्स थे उन सबको क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, बीच में कोई नहीं है। या अगर कहते समीअ मिन रसूलिल्लाह, मैंने अपने रसूल, अपने जद्द अमजद से, रसूल खुदा से सुना, वो कहते थे भैया हाउ इज़ इट पॉसिबल, रसूल खुदा का इंतकाल कब हुआ है, 11th हिजरा के अंदर, 61 हिजरा के अंदर, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 3 years है, रसूल खुदा को आपने देखा नहीं है, तो कैसे आप ये क्लेम कर सकते हैं। जवाब में कहते हैं नहनु अहलुल बैत, हम अहलुल बैत हैं। इमाम क्या करना चाह रहे थे, उनकी स्ट्रेटेजी को समझिएगा। इमाम ये करना चाह रहे थे कि देखो अगर मैंने हदीसें वैसे बयान की जैसे दूसरे बयान कर रहे हैं, यू विल कंसिडर मी वन ऑफ द रावी ऑफ द हदीस, और मेरी हदीस को तुम उठा के अपने उस कंटेमिनेटेड पूल के अंदर डालोगे, जहां पर मेरे जो आने वाले शिया हैं उस कंटेमिनेशन से कैसे बाहर निकालेंगे उस हदीस को, इट विल बी अ प्रॉब्लम। इमाम ने कहा हम ये काम ही नहीं करेंगे, हम बगैर किसी चेन के हदीस बयान करना शुरू करेंगे। अब मुझे ज़रा थोड़ी देर के लिए सुने, सोचें ज़रा, अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और मैं आपके सामने कहूँ कि मैंने अल्लाह सुबहान व तआला से जो है वही के ज़रिए से कुछ सुना है और डिस्कशन, आप कहेंगे भैया मौलाना ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, सही है। एक शख्स ये कहेगा, दूसरा शख्स क्या करेगा, दूसरा शख्स ये करेगा चलें ठीक है टेस्ट करते हैं आपको, आइए सवालात के जवाब दीजिए आप। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को एक ग्रुप क्या हुआ, एक ग्रुप ने इमाम को छोड़ दिया, लेकिन एक और ग्रुप था, उन्होंने आके सवाल करना शुरू किए और कहा कि खुदा की कसम ये वैसे ही कह रहे हैं जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी इमाम ने क्या चाहा, इमाम ने हमारी आइडेंटिटी को बचाना चाहा कि देखो जो मुझसे हदीस लेगा, इसका मतलब क्या है, अब वो जो हदीस ले रहा है, हमसे जो हदीस लेगा

सामने रीड किया जाता था कि इमाम ये आपने कहा था और हमने ये सुना है, ये सही है या गलत है। अब ये किताब इनके पास मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता था? नेक्स्ट स्टेज ये नहीं है कि ये हदीस की किताब, फॉर एग्जाम्पल नाउ टुडे इफ आई गिव यू एन असाइनमेंट यू कैन कॉपी पेस्ट एंड डू एनीथिंग। हदीस ऐसे नकल नहीं होती थी, ट्रांसमिट ऐसे नहीं होती थी। जिसके पास बुक मौजूद है, जिसके पास बुक मौजूद है, ये बुक जो है अगर हदीस किसी को उसने देनी है इजाज़त देता था। इसको कहते हैं शेखुल इजाज़ा, ये इजाज़त दे रहा है और वो उस हदीस को इजाज़त के साथ उसको लिखता था। क्यों? क्यों ये चेक्स एंड बैलेंस रखे गए? चेक्स एंड बैलेंस इस वजह से रखे गए ऐसा ना हो कि ये हदीस किसी गाली के हाथ में लग जाए और उसके अंदर डिस्टॉर्शन कर दें। अगर डिस्टॉर्शन कर भी दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज ही कैन नॉट इंसर्ट दैट हदीस इन असल, उस असल के अंदर नहीं हो सकती है। आप जान रहे हैं कि इमाम अलैहि सलातो वसलम ने क्या काम किया। नॉट ओनली दिस, भाई ये जो गाली और मुफव्वज़ा थे ये मशहूर मारूफ थे, ये अपने अकायद को लोगों के सामने जाके बयान करते थे दैट वी आर लाइक दैट, वी कंसिडर इमाम अली अलैहि सलातो वसलम लाइक दिस, मशहूर मारूफ थे। और इमाम ने क्या काम किया? इमाम ने इन लोगों के ऊपर लानत भेजी और अपने शियों को बचाया कि देखो इनके साथ जाकर नहीं बैठना, डू नॉट सिट विद देम। तो हुआ क्या कि वो तो अब आपके सामने आकर बैठने से रह गए। एंड दे कैन नॉट इंसर्ट दीज रिवायात इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स विच आर कॉल्ड असल उसूल अरबमिया। ये समझ में आ गया, ये मामला आगे चला। अब ये जो चार जो हैं, जो बड़ी किताबें आपके मौजूद हैं, काफ़ी है, इस्तफ़सार तहजीब अमलना या हज़रुल फ़कीह, ये चार बड़ी किताबें हैं। शेख कुलैनी कहते हैं, शेख कुलैनी अलकाफ़ी के कंपाइल करने वाले, ये कहते हैं कि मैंने तमाम रिवायात को खुद देखा है, वो असल जो थी मेरे पास मौजूद थी, वो असल हमारे पास मौजूद थी। सिर्फ यही नहीं था बल्कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते थे, वो किताबों को मंगाते थे और किताबों को मंगाने के बाद उसको चेक करते थे। मसलन यूनुस इब्ने अब्दुल रहमान, इमाम बाकर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को जमा किया और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाके दिखाया, इमाम ठीक है हदीस? इमाम ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। या फजल इब्ने शाज़ान ने अपनी किताब को इमाम हसन अस्करी के सामने पेश किया और इमाम ने तारीफ की, बोला अहसंत। यही नहीं, यूनुस इब्ने अब्दुल रहमान ने अपनी किताब को, किसके किताब यौम व लैला, इसको तीन इमाम के सामने पेश किया। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन बार कहा खुदा की रहमत हो तुम पर, खुदा की रहमत हो तुम पर, खुदा की रहमत हो। मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। यानी क्या होता था, हदीस की किताब लिखी जाती थी, इमाम को दिखाई जाती थी इमाम ठीक है या नहीं है। अब ये जो है उसूल जो थे, जो प्रिजर्व थे, इनको यूज़ किया किसने? इनको यूज़ किया कुलैनी जैसे, शेख सदूक जैसे उलमा ने हदीसों को लिखना शुरू किया। यू विल आस्क मी वन थिंग, मौलाना जब ये असल मौजूद थे, किताबें जो कहना है उसूल अरबा मियाँ मौजूद थी, तो फिर ये शेख कुलैनी ने किताब क्यों लिखी? फिर ये अलकाफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉज दैट वेन द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इमाम दे आर राइटिंग वॉट इमाम इज सेइंग। प्रॉब्लम ये था इसके अंदर चैप्टर वाइज हदीसें नहीं थी। सो द थिंग वॉट दे डिड एक्चुअली, इन्होंने चैप्टर वाइज इसको बनाना शुरू किया। इसके बाद शेख तूसी, मैं बस वक्त नहीं, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। शेख तूसी कहते हैं, शेख तूसी वो कहते हैं कि हम सब का शिया का इजमा है कि जितनी रिवायात उसूल अरबा मियाँ की हैं ये सब की सब सही हदीस हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। शेख सदूक कहते हैं कि मल्ला या हज़रुल फ़कीह के प्रीफेस के अंदर कहते हैं मैंने जितनी भी रिवायात लिखी हैं उसको मैंने खुदा और अपने दरमियान में हाजिर और नाजिर बनकर इन अहादीस को मैंने जमा किया है। यानी रोज़े कयामत जो हैं कि मैं जवाब दूँ और जितनी मैं रिसर्च कर सकता था उस रिसर्च के साथ इन अहादीस को मैंने जमा किया है। नाउ अ पर्सन कम्स और ब्लैंकेट स्टेटमेंट दें, ये सब गालियों का काम है। सो आयतुल्लाह मुनीर खब्बास का जो इंटरव्यू था उसके अंदर अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, बोला अगर कोई शख्स ये स्टेटमेंट देता है तो इट मीन्स कि उसे हदीस की कलेक्शन का कोई इल्म ही नहीं है। वो नहीं जानते कि हदीस जमा कैसे हुई हैं। आखिरी बात और मसाइब की मंजिल में आ गया मैं। देखें हदीस, देखें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पास एक सलवात है, मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लामा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक शख्स आता है, इसी से कनेक्टेड है मामला, एक शख्स आता है, बूढ़ा शख्स है,
تو حاکم ابن عتیبہ راوی ہے, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص آیا اور آ کر جو ہے امام کے گھر میں موجود ہیں, امام اور فیملی ممبرز بھی موجود ہیں, آ کر سلام کرتا ہے.

कैसा होता है इस शख्स की जानिब निगाह करें, यानी क्राइटेरिया पता चल गया। क्राइटेरिया क्या है? मोहब्बत अली के लिए, दुश्मनी अली के लिए, अली का हलाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल, अहले बैत अलैहि सल्लतु वसल्लम का हलाल हलाल है, उनका करार करदा हराम हराम है, और उसके साथ ज़ुहूर की जो है तैयारी करनी है। अज़ीज़ान, मैंने आप सबका वक्त लिया। इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सख्तियों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। हम ये समझते हैं कि आसानियाँ हैं, मसाइब हैं जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आम तौर पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि देखें, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई आप रिएक्ट कर रहे हैं, या आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, इसके पीछे चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है, वो कैरी कर रहे होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, द वे यू रिएक्ट। किसी ने आकर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, चाइल्डहुड ट्रॉमा किसको कहते हैं? देखें, इमाम इनकी रूह लतीफ़ होती है। अगर आप एहसासात रखते हैं, इमाम के एहसासात सबसे ज़्यादा होते हैं, इमोशन सबसे ज़्यादा होते हैं। किसी ने आकर पूछा इमाम बाकर से, क्या आपने इमाम हुसैन के ज़माने को देखा है, दर्क किया है? तो आपने क्या कहा? जवाब में कहा, कुतिल जद्दिल हुसैन वली अरबा सिनीन, कि मैं जब 4 साल का था, उम्र 4 साल तक की थी, मेरे दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। और कहते हैं, वह इन्नी लअज़्कुरु मक्तलहु, मैं बिल्कुल याद रखता हूँ कि किस तरीके से मेरे दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। सन 61 हिजरी है, ये 4 साल का बच्चा है, तमाम मसाइब को देखते हुए चला जाता है। और वो मुसीबत भी इमाम को याद है कि अलकाफ़ी की ये फिर से रिवायत है कि जब ये काफ़िले को, जो लूटा हुआ काफ़िला था, शाम में लाया गया, और जब दरबार में खड़ा किया गया, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, और जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है यजीद को, तो यजीद से बर्दाश्त ना हुआ, यजीद गज़बनाक हो गया, और फिर अपने जो सारे दरबारी थे उनसे पूछा कि क्या किया जाए इनका। सब ने मिलकर एक जवाब दिया, इनको कत्ल कर दिया जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा की कसम, ये तो फिरौन उनके दरबारियों ने भी मूसा और हारून के लिए नहीं कहा था। तो यजीद कहते हैं कि क्या कहा था और क्यों कहा था? कहा था कि इर्जे व अखा, इन दोनों को छोड़ दो, तुम ये इस वजह से कह रहे हो कि ये जितने भी अफराद यहाँ पर बैठे हैं सब के सब जिना जाते हैं, ये हलाल ज़ादे नहीं हैं, क्योंकि नबी और औलाद नबी को कत्ल करने के लिए कोई नहीं आता है, बल्कि सिर्फ हराम ज़ादे आते हैं। इमाम को छोड़ दिया जाता है और ये वक्त गुजरता है। इसके बाद इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, वो तो 9 साल हुकूमत रही है हिशाम की। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज करने के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं मक्का, और वो वक्त था कि जब हिशाम उस वक्त हज करने के लिए आया था, लोग जो हैं हिशाम को छोड़कर वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, और ये जो है इसे बर्दाश्त नहीं होता है, और बुग्ज़ और कीना दिल में होता है कि मैं खलीफा वक्त हूँ, लेकिन सब इमाम के पास जा रहे हैं, बुग्ज़ और कीना के साथ इमाम के लिए प्लानिंग करता है, और एक अब ख़ास तरीके से इमाम को जहर देना चाहता है, जो इससे पहले कभी भी ऐसा जहर नहीं दिया गया। कैसे जहर दिया गया? जो जीन है असब की, घोड़े की जो जीन है, उसके ऊपर जहर को मला गया, और फिर इमाम से कहा गया कि इस जीन के ऊपर आकर बैठिए। अरे, इमाम ने बैठना था कि इमाम का जो रानी मुबारक है वो सूज गई जहर के असर से। 3 दिन तक इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर मर के ऊपर तड़पते रहे। अब वसीयत का वक्त आया है, और वसीयत के वक्त इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छठे इमाम को बुलाया और कहा, या जाफ़र औक़िफ़ ली मिन माली कज़ा व कज़ा, मेरे माल में से ये वक्फ़ कर दो इतना पैसा, और मिना के अंदर 10 साल तक मेरे लिए मरसिया और नौहा कहना। इमाम की शहादत होती है। खुशकिस्मत है वो बाप जिसके पास बेटा मौजूद हो, बेटा जो है वसीयत को पूरा करने वाला हो। इमाम की वसीयत पर अमल हुआ। सलाम हो इमाम सज्जाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक वसीयत की थी कि किस हाल के अंदर इमाम सज्जाद के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा जब मदीना

वापस पलटना, तो हमारे शियों को सलाम देना और कहना जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद करना, और जब किसी शहीद और गरीबुल वतन को देखना तो फिर हम हुसैन के ऊपर तुम नौहा करना। मैं कहूँगा ए इमाम हुसैन, आपने भी अपने ऊपर नौहा और गिरिया को तरजीह दी है। यही वजह है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि जब सुना कि मेरे हुसैन को करबला में प्यासा शहीद कर दिया जाएगा तो पहला सवाल क्या, बाबा क्या उस वक्त कोई मेरे हुसैन पे रोने वाला नहीं होगा? अरे रसूल खुदा ने कहा खुदावंद मुताल एक कौम को खल्क करेगा जिसके मर्द अरे इनके मर्दों पर रोएंगे, जिनके बच्चे इनके बच्चों पर रोएंगे। मैं दोनों हाथ जोड़कर बीबी से कहूँगा, बीबी ये आपने ऐसा क्यों कह दिया? अरे क्या उस वक्त उम्मे कुलसूम, रबाब और सकीना ज़ैनब ये मौजूद ना होंगी? तो जवाब यह आएगा, ये सवाल करना मिला था रोजे कयामत तक के लिए था, लेकिन मैं जानती हूं करबला की मुसीबत के बाद इन्हें रोने ना दिया जाएगा। अरे ज़ैनब रोना चाहेगी तो कहीं से ताजिया ना आएगा, अरे सकीना या हुसैन कहना चाहेगी तो कोई आके दुर्रे लगाने लगेगा, और सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और गर्दन में तौके खारदा, अरे कभी या हुसैन कहना चाहेंगे तो कोई आके नोके की अना चुबाना चाहेगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबियन क़लबुन मातम हुसैन।